आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। रिश्तों के रंग बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई, अपनापन और विश्वास हर दौर में दिलों को जोड़ने का काम करता रहता है।

जब मन में शांति हो तो हर सुबह एक गीत बन जाती है। आज की भोर को प्रेम, सोहाट और उम्मीदों के सुरों से सजाएं।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

All right, welcome back, guys, to Namaste, Hello, Adab with me, RJ Sri Vaishnavi, to your favorite station 101.9. All right, suspense ka pressure cooker finally whistle maane wala hai. Toda, today, May 14th is officially celebrated as National Dance Like a Chicken Day. Yes, you heard me right. It's National Dance Like a Chicken Day. दुनिया में इतना सीरियस इश्यूज चल रहा है और वैष्णवी ये बोल रहा है कि क्या क्या बोल रहा है, सोच रहे ना आप? हाँ, पहले पूरी कहानी तो सुनिए. और हम ह्यूमंस ने डिसाइड किया कि आज हम चिकन बन के डांस करेंगे. हॉनेस्टली प्रियोरिटीज इम्प्रेसिव है. एंड टेल मी वन थिंग, हैव यू एवर सीन समवन डूइंग द चिकन डांस विद अ स्ट्रेट फेस? नो, इम्पॉसिबल. जैसे ही वो ट्यून स्टार्ट करते हैं ना, suddenly everybody becomes a part-time poultry performer.

हैंड्स बिकम विंग्स, नी स्टार्ट बाउंसिंग और कॉन्फिडेंस लेवल हाई सा होता है जैसे एक बॉलीवुड बैकअप डांसर हो. नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट. लेट मी टेल यू, द फेमस चिकन डांस वॉज एक्चुअली क्रिएटेड इन द 1950s बाई अ स्विस अकॉर्डियन प्लेयर नेम्ड वर्नर थॉमस. बट हियर इज द प्लॉट ट्विस्ट, इट वॉज इन इवन कॉल्ड द चिकन डांस इनिशियली. सो द फर्स्ट ओरिजिनली इट वॉज कॉल्ड डीर इंटन डांस, मीन्स द डक डांस. हाँ जी, चिकन भी नहीं था इनिशियली, पुअर डक गॉट रिप्लेस्ड लेटर. सम पीपल इवन से इट स्टार्टेड एज अ फन अक्टोबर फेस्ट ड्रिंकिंग सॉन्ग इन यूरोप विद दैट क्लासिक पोलका उम पापा स्टाइल म्यूजिक, राइट? देन लेटर द नेम चेंज्ड विथ यू नो ओवर द टाइम लाइक बर्ड डांस. बट वेन इट फाइनली रीच्ड अमेरिका इन 1970s, पीपल एडेड दोज फनी बीक मूवमेंट्स ऑफ द चिकन विंग फ्लैप्स एंड टेल शेक्स एंड बूम द चिकन डांस वॉज बॉर्न. स्टे ट्यून्ड टू मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन दिस टॉपिक एंड आफ्टर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग्स.

0: FM Rainbow 101.9.
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे सुरभि और आप सुन रहे हैं FM Rainbow 101.9 FM. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर नया दिन अपने साथ कुछ खास वजह लेकर आता है और आज का दिन है सेलिब्रेशन का, क्योंकि आज जन्मदिन है कुछ ऐसी महान और इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ का जिन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट और डेडिकेशन से लाखों दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है. दीज स्टार्स आर नॉट जस्ट फेमस नेम्स बल्कि इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं. तो चलिए, दिल से भेजते हैं उन्हें लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस और कहते हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आज हम उस महान वीर योद्धा के जन्म दिवस को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है. आप हैं छत्रपति संभाजी महाराज. दोस्तों, छत्रपति जी एक शासक नहीं थे बल्कि एक साहस, निष्ठा और अधिक संकल्प के प्रतीक थे. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों और अपने देश के प्रति कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा. तो उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि असली ताकत डरने में नहीं है बल्कि हर परिस्थिति में डटे रहने में होती है. हम अक्सर क्या होता है कि परिस्थितियों बस अपनी उस परिस्थिति को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमें संभाजी की तरह ही हर परिस्थिति में डटे रहना है. आज हम इस विशेष अवसर पर उन्हें सादर नमन करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लेते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, आगे भी म्यूजिक है और सेलिब्रेशन का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा.
2: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు అందిస్తున్నారు అద్భుతమైన 444 రోజుల డిపాజిట్ పథకం.
3: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయోవృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
2: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ను సంప్రదించండి.

नमस्ते, हेलो आदाब। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। दोस्तों, कुछ नाम सिर्फ सुर्खियों में नहीं रहते बल्कि दिलों में बस जाते हैं, और ऐसा ही एक नाम है वहीदा रहमान जी का। आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज जन्मदिन है भारतीय सिनेमा की उस अदाकारा

का जिनकी अदाकारी में नज़ाकत थी, मुस्कान में सादगी थी और हर किरदार में एक अलग ही जादू था। जब भी हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बात होती है तो गाइड, प्यासा जैसी फिल्मों के साथ वहीदा रहमान जी का शानदार अदाकारी जरूर याद आती है। उन्होंने अपने हर किरदार से दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। दोस्तों, कुछ सितारे वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ सितारे हमेशा चमकते रहते हैं। वहीदा रहमान जी उन्हीं चमकते सितारों में से एक हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर इस खास मौके पर उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी यूं ही खुशियों, सेहत और मुस्कुराहट से भरी रहे। और अब आप उनके खास दिन को और भी यादगार बनाते हैं उनके सदाबहार गीतों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये दिन समर्पित है वहीदा रहमान जी की दिलकश अदाओं और सुनहरे सफ़र के नाम।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। आज का दिन उन सभी के लिए विशेष है जो सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व का जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गर्व से ऊंचा किया है। आप हैं मानुषी छिल्लर। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे मानसी छिल्लर को। मानसी छिल्लर केवल एक सुंदरता की मिसाल नहीं है, बल्कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने ये साबित किया है, अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। मेडिकल की पढ़ाई से लेकर मिस वर्ल्ड तक का ताज जीतने का उनका ये सफ़र युवा के लिए एक प्रेरणादायक है। एक लगन और समर्पण से असंभव को संभव बनाया जा सकता है, उसका एक उदाहरण है। आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस विथ न्यू म्यूजिक।

समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन नवाचार।

0: लगातार सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण, ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. A 2-day BRICS foreign ministers meeting got underway in New Delhi today. The meeting is being chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. During the meeting, the foreign ministers will

एक बार फिर से आपका स्वागत है FM रेनबो 101.9। जरा सोचिए, सुबह की हल्की ठंड हो, हाथ में गरम गरम चाय हो और साथ में अगर कुछ कुरकुरा मुलायम और दिल को सुकून देने वाला मिल जाए तो दिन बन जाता है ना। हाँ जी, आज का दिन बिल्कुल उसी छोटे छोटे खुशियों वाले पल के नाम है, नेशनल बटर मिल्क बिस्किट डे। दोस्तों, कभी कभी खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं मिलती, बल्कि उसी छोटी सी प्लेट में मिलती है जिसमें बटर मिल्क बिस्किट रखे हों और हम बिना किसी टेंशन के बस उसे एंजॉय कर रहे हों। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि चाय की पहली चुस्की और बिस्कुट का पहला टुकड़ा मूड बदल देता है? बस वही तो जादू है आज के दिन का। तो चलिए, आज इस खास मौके पर हम अपने दिल में थोड़ा सा क्रंच स्माइल जोड़ते हैं। घर पर हों या स्कूल से लौट रहे हों या दोस्तों के साथ हों, एक बिस्किट का ब्रेक बनाइए और उस पल को थोड़ा सा जी लीजिए। दोस्तों, जिंदगी हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों में नहीं चलती, कभी कभी एक छोटा सा बिस्किट भी दिल को बहुत बड़ा सुकून दे देता है। तो आज का दिन समर्पित है उन छोटी छोटी खुशियों के नाम और आप सभी के लिए एक वार्म स्माइल और क्रिस्पी विशेस के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले गाने भी उतने ही टेस्टी और क्रिस्पी होने वाले हैं।

0: सो द टॉपिक वॉज पुराने जमाने की वो कौन सी एक चीज़ है जो आप चाहते हो कि आज फिर से वापस आ जाए. यस एंड अनदर थिंग आई रियली मिस इज सुरभि, जेन्यून एक्साइटमेंट इन स्मॉल थिंग्स, राइट? वन ऑन वन संडे आउटिंग यूज टू फील लाइक अ वर्ल्ड टूर. वन न्यू ड्रेस फॉर फेस्टिवल्स फेल्ट स्पेशल. वन फैमिली फोटो मेंट एवरीबडी स्टैंडिंग सीरियसली लाइक अ पासपोर्ट एप्लीकेशन. मे बी द लाइफ वॉज इन परफेक्ट बैक देन ईदर, बट पीपल वो मोर प्रेजेंट इन मोमेंट्स. आजकल हम मोमेंट्स एंजॉय करने से पहले डॉक्यूमेंट कर देते हैं. एंड ऑनेस्टली आई ऑल्सो मिस स्लोअर इवनिंग्स, रेडियो सॉन्ग्स प्लेइंग समवेयर, पार्क कट्स ब्रिंगिंग फैमिलीज टुगेदर, नेबर्स कैजुअली टॉकिंग आउटसाइड होम्स. नाउअडेज साइलेंस इटसेल्फ फील्स रेयर. आई थिंक डीप डाउन एवरीबडी मिसेज अ लिल सॉफ्टनेस फ्रॉम ओल्ड टाइम्स, नॉट बिकॉज द पास्ट वॉज बेटर, बट बिकॉज इट लाइफ फेल्ट लेस रश्ड दैन मोर ह्यूमन.
1: बिल्कुल सही बोल रहे हो वैष्णवी. वो फैमिली टाइम तो पूरा मिस कर ही रहे हैं, साथ में यदि मैं खाने में कुछ बात करूं जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ, तो वो जब दादी या माँ बड़े प्यार से मटकी में मक्खन निकालती थी, वो ठंडी सॉफ्ट और फ्रेश मक्खन की जो खुशबू थी, ऊपर से रोटी पर उसका मेल्ट होना, बस वही मोमेंट. ओ माई गॉड, प्योर हैप्पीनेस, नो ब्रांड, नो पैकेज, जस्ट प्योर लव एंड पेशेंस, जिससे टाइम ही कुछ अलग ही फील होने लगता था. जिसे बनाने में टाइम लगता था लेकिन खाने में सिर्फ सेकंड्स लगते थे. आजकल हम बटर पैकेट्स तो देख लेते हैं, बट दैट होममेड मक्खन, उसकी बात ही अलग थी. उसमें सिर्फ टेस्ट नहीं था, उसमें केयर, वार्मथ एंड घर का प्यार होता था. कभी तुमने मिस किया उसको वैष्णवी?
0: यस यस ट्रू, या इवन आई मिस दोज थिंग्स. Yes, you truly reminded me so many things, Surbhi. So I lost in those thoughts.
1: Yeah. So listeners, क्या आपको भी वो golden days याद आते हैं जब रोटी के साथ सबसे बड़ा excitement होता था? आज मक्खन मिलेगा, आज वो melting moment मिलेगा, और उसी में हम खो जाते थे. तो चलिए आज उस simple लेकिन priceless स्वाद को याद करते हैं और दिल से कहते हैं we truly miss homemade happiness.
0: Yes, if you want to also share such thoughts, please call us on number 0402323003, 0402323482104029729704715.
1: So stay tuned, क्योंकि आगे भी memories और emotions का ये सफर चलता रहेगा.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. So, आज इसी के साथ लिसनर्स हमने याद की, आज हमने मनाया बहुत सभी सारे लोगों का बर्थडे, आज हमने सेलिब्रेट किया, बहुत सारी खास बातें याद किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी खूबसूरत और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मानुसी छिल्लर, और साथ ही ट्रिब्यूट दिया लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को। उनकी जर्नी आज भी हमें इंस्पायर करती है। हमने बात की करेज और प्राइड की, जिसमें हम जोड़ सकते हैं संभाजी महाराज को। And yes, we also celebrate some unique days like National Buttermilk Biscuit Day. That simple स्वाद जो हमारे घर की याद दिला देता है, और National Decency Day जो हमें याद दिलाता है respect, kindness और humanity की importance. तो listener, आज की इस पूरी जर्नी में मैं अगर एक मैसेज दूँ तो वो यही है, celebrate people, celebrate memories and never forget your roots.
2: Yes, so true. Today felt like less like a show, more like a long, heartfelt conversations, from goofy chicken dances to cute chihuahuas, from old traditions to beautiful memories. We laughed, we remembered and traveled through so many emotions together. And the time in the studio clock is 1:59 and it's time to say bye-bye. This is your host, Sri Vaishnavi, signing off, and Surbhi.
1: Surbhi RJ.
2: Yes, signing off with a smile and lot of gratitude, and one reminder, stay kind, stay real and never lose your inner child. And most importantly, stay hydrated. Listen to this beautiful song.
3: Nenu M. Srinivas, District Child Protection Officer, Hyderabad. Pillala paranga, missing children's gaane, 0 to 18 years, etuvanti pillalu meeku kanapadinatlayite, మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అన్నట్టు.

0: ఇంటర్లు
1: ఒక్క శ్రీ చైతన్య నుండి.
2: FM Rainbow 101.9.

0: FM Rainbow 101.9।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: సేవలకు సంబంధించిన హక్కులు 1987 సెక్షన్ 12 లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ ప్రకారం దేశ పౌరులు ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా న్యాయ సహాయాన్ని న్యాయబంధు మొబైల్ యాప్ మరియు www.probono-dog.in ద్వారా పొందవచ్చు.
1: Rainbow 101.9
2: స్టూడియో క్లాక్ సమయం 4:03 అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
3: ఆప్సి కహనా చాతి హూ యూ ఆర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్. ఆప్ ఇత్నీ యంగ్ హై ఔర్ ఏసే మే జబ్ హమ్ ఆప్కే సాత్ రిటైర్డ్ శబ్ద ఇస్తమాల్ కర్తే హై తో వో థోడా సా సమజ్ నహీ ఆతా క్యూంకి రిటైర్ తో ఆమ్ తౌర్ పే వ్యక్తి 60 సాల్ కీ ఉమ్ర కే బాద్ హోతా హై. తో ఆప్ ఇత్నీ ఛోటీ సీ ఉమ్ర మే రిటైర్డ్ కైసే హై?
4: బాత్ ఆప్కి సహీ హై క్యూంకి మే భీ రిటైర్డ్ యే శబ్ద थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है और वो मेरे लिए है पक्का. और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स.
3: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल. अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है? कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
4: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
3: जी.
4: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आजादी के लिए लड़े. उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल. और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा.
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना. तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
4: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
3: जी,
4: मेरे बचपन के तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था. जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर की. ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं. जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं. बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का. और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
3: जी.
4: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा. तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया. बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया. जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं. हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है. तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे.
3: अच्छा.
4: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह. तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी. इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था. सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली. एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग. तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का.
3: हाँ.
4: लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे.

0: लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती
1: ओह सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
0: है। सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में।
1: हाँ
0: सो लाइफ तो सेट थी एज अ यंग पर्सन। मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है। बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की। उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है, ना? तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आप से बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित।

0: क्या दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी।
0: वाह,
1: और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स एकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: ओह दैट्स सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में

0: डालनी पड़ती है बिल्कुल। आपको आपकी पास्ट लाइफ, जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स। आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं, और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है। तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है।
1: जी
0: सो दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है, ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें।
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हो या सिविलियंस हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए।
0: जी
1: लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं, तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं। तो एज पर यू, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं।
1: जी
0: एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है। सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके। सो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है। अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन्ड है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे, तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इम्पॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो इसीलिए जैसे आपने कहा, बहुत हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। कोई भी एक चीज अगर खराब हुई, तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है।
0: जी
1: तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पाठ खुद क्या सीखा है? मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं?
0: जी लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी। एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपनी टीम को, अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए, तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा। वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल। और तीसरी चीज है आपकी टीम। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी।
1: दैट्स अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है। बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं, आप रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है?

0: इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर, इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है,
0: जी
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरे ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है, तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज अ वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर. बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है, और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है. तो एज अ वुमेन, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए. आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं.
0: जी, बेहतरीन। मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी, वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता, लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड।
1: रिपब्लिक डे परेड,
0: हाँ जी।
1: उसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है।
0: पूरे 14 किलोमीटर तक।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर, जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। एक वो जो सलामी थी,
0: जी।
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि
0: सपना।
1: उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब
0: ऑसम।
1: आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हम

0: हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का,
1: हाँ
0: लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा
1: वाह।
0: जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ।
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें। और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है।
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ।
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूं।
1: ओ माय गॉड।
0: तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर
1: बेसिकली।
0: स्ट्रेंथ, वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: ऑसम। कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो। मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है। आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक

0: जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी।
1: जी
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है।
0: जी
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो।
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं, वो एक्चुअल लाइफ है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में, जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस, जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
1: इमोशनल किया हो,
0: जी
1: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग-अलग उसके रीजंस हैं। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है,
0: जी
1: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
0: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और CDS जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए?
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं, जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि
0: जी
1: वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो
0: हाँ
1: इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है।
0: ओके आई गॉट द आंसर।
1: तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं एक बताना चाहूंगी, फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है। और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं, वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया। तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना 12th पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज, जो सामान्य ज्ञान होता है, उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है।
0: जी
1: उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इमोशनल लोगों की

0: नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी। पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही थी,
0: जी
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला

0: हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं, आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन

0: आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
1: बिल्कुल।
0: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे,
1: जी
0: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का, धन्यवाद, जय हिंद।
0: जय हिंद।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: FM Rainbow 101.9

0: అలో బాగా చలిగా ఉంది దుప్పటి కప్పండ్రా.
1: FM Rainbow 101.9.

दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम नए रंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आज नए रंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बता देते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ होगा हर्फ ताबिंदा से, तहरीर होगी सैयदा आसमा जैदी साहबा की और आवाज़ होगी जैदी साहब की। उसके बाद आप सुनेंगे मजाहिया मुशायरा। मुशायरे में शिरकत करने वाले शोरा हैं जनाब साजिद संजीदा, जनाब सरदार असर, जनाब डॉक्टर मोइनुद्दीन अमर बंबू, जनाब लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ और जनाब चाचा पाल मूरी साहब। और मुशायरे की निज़ामत कर रही हैं मोहतरमा रेशमा

0: तबस्सुम साहिबा। उसके बाद आप सुनेंगे गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम के तहत खूबसूरत फिल्मी नगमे, और प्याम शब के साथ प्रोग्राम नैरंग का इख्तिताम होगा। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हर्फ ताबिंदा से। तहरीर है सैयदा आसमा जैदी साहबा की और आवाज़ है जैदी साहब की।
1: हुब्बुल वतनी यानी अपने वतन से मोहब्बत करना, ये एक फितरी जज्बा है जो हर इंसान के दिल में पाया जाता है। इंसान अपने मुल्क की मिट्टी, ज़बान, सकाफत और लोगों से मोहब्बत करता है। वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि हम अपने मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए काम करें, अच्छे शहरी बने, कानून की पाबंदी करें, सफाई का ख्याल रखें और दूसरों के हकूक़ का एहतराम करें। जो लोग अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ देते हैं वो हमेशा कौम के हीरो बन जाते हैं। हमारा वतन भारत एक अजीम मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब, ज़बानों और सकाफ़तों के लोग मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद व इत्तेफाक़ को मज़बूत बनाएं और अपने वतन का नाम रोशन करें। हुब्बुल वतनी सिर्फ नारों या बातों तक महदूद नहीं बल्कि इसका अमली इजहार भी ज़रूरी है। एक मोहब्बे वतन शहरी कानून की पाबंदी करता है, ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देता है, सफाई का ख्याल रखता है, दूसरों के हकूक़ का एहतराम करता है और मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करता है। तलबा दिल लगा कर तालीम हासिल करें, असातिज़ा दयानतदारी से तालीम दें, डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करें और मज़दूर मेहनत से काम करें तो मुल्क तरक्की करता है। हमारा वतन भारत एक अजीम मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों और तकाज़ों के लोग रहते हैं लेकिन सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का बर्ताव करते हैं। यही इत्तेहाद हमारी असल ताकत है। हमें चाहिए कि हम मजहबी, लिसानी और इलाकाई इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद हो जाएं। हुब्बुल वतनी का तकाजा ये भी है कि हम अपने कौमी वसाइल की हिफाजत करें, अवामी इमलाक को नुकसान न पहुँचाएँ और अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। मुल्क की तरक्की में हर फर्द का किरदार अहम होता है। अगर हर शहरी अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दे तो हमारा वतन दुनिया के तरक्की याफ्त ममालिक की सफ़ में शामिल हो सकता है। वतन की आज़ादी और सलामती के लिए बेशुमार लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे सिपाही सरहदों पर रहकर मुल्क की हिफाजत करते हैं ताकि हम सुकून और अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हमें इनकी कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए और अपने वतन के लिए हमेशा वफादार रहना चाहिए। मुख्तसरन, हुब्बुल वतनी एक ऐसा अजीम जज्बा है जो इंसान को अपने वतन की खिदमत, हिफाजत और तरक्की के लिए तैयार करता है। एक सच्चा मोहब्ब वतन हमेशा अपने मुल्क की इज्जत, तरक्की और खुशहाली को अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर तरजीह देता है। हमें भी चाहिए कि हम अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करें और इसकी तामीर व तरक्की में भरपूर हिस्सा लें।
0: दोस्तों, अभी आपने सुना हर्फ़ ताबिंदा। तहरीर थी सैयदा आसमा जैदी साहबा की और आवाज़ थी जैदी साहब की। दोस्तों, आज की तेज़ रफ्तार और परेशानियों से भरे दौर में मज़ाह और हंसी मज़ाक इंसान के लिए एक नेमत बन गया है। हंसी सिर्फ़ चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि दिल का सुकून भी है। इसीलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मज़ाहिया मुशायरा। मज़ाहिया मुशायरे में आप जिन शोरा का कलाम सुनेंगे उनके नाम कुछ इस तरह हैं जनाब

0: क्या है कि
1: वाह
0: इंटर डिग्री के बच्चों को मैं तारीख पढ़ाता हूँ, इंटर डिग्री
1: क्या
0: के बच्चों को मैं तारीख
1: तारीख
0: पढ़ाता
1: पढ़ाता हूँ,
0: हूँ, मैं क्या जानू कौन है पौरस कौन सिकंदर, क्या है कि
1: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह
0: इंटर
1: वाह
0: डिग्री के बच्चों
1: वाह
0: को
1: वाह
0: मैं
1: वाह वाह
0: तारीख पढ़ाता हूँ,
1: वाह, बहुत
0: इंटर
1: अच्छा
0: डिग्री
1: शेर,
0: के
1: वाह वाह
0: बच्चों
1: वाह
0: को
1: वाह,
0: मैं तारीख पढ़ाता हूँ, मैं क्या जानू कौन है पौरस कौन सिकंदर,
1: क्या
0: क्या
1: ही
0: है
1: कहेंगे, वाह
0: कि
1: वाह,
0: एक माशा भी सोना उसको अब तक नहीं दिलाया मैं, एक माशा भी सोना उसको
1: अब
0: अभी
1: तक
0: तक
1: नहीं
0: नहीं
1: दिलाया,
0: दिलाया मैं, दावत में पहनी थी बेगम किसका जेवर,
1: क्या है
0: क्या है
1: कि,
0: कि
1: वाह
0: दावत में
1: वाह
0: पहनी थी बेगम किसका जेवर, क्या
1: क्या
0: है
1: कहने
0: कि
1: सब, वाह
0: मैं स्मार्ट नजर आता हूँ साजिद लोग ये कहते हैं, मैं स्मार्ट नजर आता हूँ साजिद लोग ये कहते हैं, साबुन से बस मुंह धोता हूँ, स्नो पाउडर क्या है कि
1: क्या बात है भाई,
0: साबुन
1: वाह
0: से
1: वाह
0: बस मुंह धोता
1: वाह
0: हूँ, स्नो पाउडर क्या है कि
1: वाह
0: किसके
1: वाह
0: साथ चलेगा मेरे इश्क का चक्कर, क्या है कि अरमाना तो खूब है दिल में मेरा मुकद्दर, क्या है कि
1: वाह वाह वाह वाह वाह, संजीदा साहब की इस गैर संजीदा शायरी ने यकीनन हमारे सामईन में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया होगा और आप यकीनन महसूस हुए होंगे। आइए अब मैं जनाब लतीफुद्दीन लतीफ साहब को दावत सुखन देती हूँ। उनके यहाँ तंज और मिजाह दोनों शबाब पर नजर आते हैं, तहत और तरन्नुम दोनों में कलाम सुनाते हैं, हर मुशायरे में उनका होना लाजमी समझा जाता है। जनाब लतीफुद्दीन लतीफ साहब न सिर्फ मिजाहिया कलाम लिखते हैं और पढ़ते भी बड़े अच्छे अंदाज में हैं, इसके अलावा आप ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। उन्हीं के इस शेर से मैं उन्हें दावत सुखन देना चाहूंगी। बीवी हो कमाई पूत तो शौहर के मजे हैं, बीवी हो कमाई पूत तो शौहर के मजे हैं, हर कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। जनाब लतीफुद्दीन लतीफ,
2: सदर साहब की इजाजत से। सर पे वो मार मार के टकला किया मुझे, सर पे वो मार मार के टकला
1: टकला
2: किया
1: किया मुझे,
2: मुझे, चिपका के मेरी नाक भी नकटा किया मुझे,
1: क्या बात है भाई,
2: चिपका के
1: वाह वाह
2: मेरी
1: वाह
2: नाक
1: वाह
2: भी
1: वाह
2: नकटा किया
1: वाह,
2: मुझे, अब क्या बताऊं आपको क्या क्या किया मुझे, अब क्या
1: क्या
2: बताऊं आपको क्या क्या
1: क्या
2: क्या
1: क्या
2: किया
1: किया
2: मुझे,
1: मुझे,
2: उसकी ही कान भैरी ने भैरा किया मुझे,
1: वाह वाह
2: उसकी
1: वाह
2: ही कान
1: वाह,
2: भैरी ने भैरा किया मुझे। आइए, पहले तो उसने खुद ही इशारा किया मुझे,
1: तो
2: पहले
1: उसने
2: तो उसने खुद ही इशारा किया
1: किया
2: मुझे,
1: मुझे
2: अपना बना के अपना ही शहदा किया
1: शहदा
2: मुझे,
1: किया, वाह,
2: अपना बना के अपना
1: अपना
2: ही
1: ही
2: शहदा
1: शहदा
2: किया
1: किया मुझे,
2: मुझे, शादी के बाद जानते हो क्या किया मुझे, शादी के बाद जानते हो क्या किया मुझे, बिछड़ा के माँ से बाप से तन्हा किया
1: अरे
2: मुझे,
1: वाह
2: बिछड़ा
1: क्या
2: के
1: बात
2: माँ
1: है
2: से
1: भाई,
2: बाप
1: वाह वाह
2: से
1: वाह वाह
2: तन्हा किया मुझे। शुक्रिया।
1: वाह,
2: आइए गजल का मतला चंद शेर समाप्त फरमाइए। हाल क्या पूछते हो ऐखर का, हाल क्या
1: क्या पूछते
2: पूछते
1: हो
2: हो ऐखर
1: आखिर का,
2: का, रोज मंजर है घर में महशर का,
1: क्या बात
2: क्या
1: है, बात है, वाह वाह
2: रोज
1: वाह वाह
2: रोज मंजर है
1: वाह
2: घर
1: वाह
2: में
1: वाह,
2: महशर
1: महशर,
2: का, रोज मंजर है घर में महशर का, आला अफसर हूँ सारे दफ्तर का,
1: आला अफसर,
2: आला
1: अफसर
2: अफसर
1: हूँ
2: हूँ
1: सारे
2: सारे
1: दफ्तर
2: दफ्तर का,
1: का,
2: घर में रुतबा है पना टेंडर का,
1: अरे वाह वाह वाह,
2: सारा
1: कहने तो,
2: आला अफसर
1: वाह
2: हूँ
1: वाह
2: सारे
1: वाह
2: दफ्तर का, घर में रुतबा है पन अटेंडर का,
1: वाह वाह,
2: बाल
1: बाल
2: एक भी बचा नहीं सर का, बाल एक
1: एक
2: भी
1: भी
2: बचा
1: बचा नहीं
2: नहीं सर
1: सर
2: का,
1: का,
2: सर हुआ फर्श संगे मरमर का,
1: क्या बात है
2: सर
1: भाई,
2: हुआ
1: वाह
2: फर्श
1: वाह वाह वाह,
2: संगे
1: क्या
2: मरमर
1: तस्वीर,
2: का,
1: वाह वाह वाह वाह,
2: सर
1: अरे वाह वाह वाह,
2: हुआ फर्श संगे मरमर
1: संगमरमर
2: का,
1: का
2: कोसती है सदा वो यूं मुझको,
1: कोसती है
2: कोसती
1: सदा,
2: है सदा वो यूं मुझको, मुर्दा निकलो जी इस दलिंदर का,
1: अरे वाह वाह
2: मुर्दा
1: क्या
2: निकलो
1: बात
2: जी
1: है
2: इस
1: भाई, क्या
2: दलिंदर
1: सफिया
2: का,
1: इस्तेमाल किया है,
2: मुर्दा
1: वाह
2: निकलो
1: वाह
2: जी
1: वाह,
2: इस दलिंदर
1: दलिंदर
2: का,
1: का,
2: उसके बाड़ों में आके छोड़ा घर, उसके बाड़ों में आके छोड़ा घर, अब रहा घाट का ना मैं घर का,
1: क्या
2: अब
1: बात है
2: रहा
1: भाई,
2: घाट
1: क्या
2: का
1: बात,
2: ना मैं घर का।
1: सच्चाई
2: ये
1: है,
2: शेर शोरा हजरात के लिए, दाद लेना है दाद देना है,
1: हाँ दाद लेना
2: दाद
1: है,
2: लेना है दाद
1: दाद
2: देना
1: देना
2: है,
1: है,
2: काम इतना ही है सुकनवर का,
1: क्या
2: काम
1: कहेंगे
2: इतना ही है
1: भाई, वाह
2: सुकनवर
1: वाह
2: का,
1: वाह वाह वाह,
2: दाद
1: वाह
2: लेना
1: वाह
2: है
1: वाह
2: दाद
1: वाह,
2: देना है,
1: काम
2: काम इतना ही है सुकनवर का। मकता पेश है, रोज
1: अच्छा,
2: लड़ती लतीफ वो मुझसे, रोज लड़ती
1: मुझसे,
2: लतीफ वो मुझसे, लगता रिश्ता नहीं निभे सर का,
1: क्या
2: लगता
1: कहने
2: रिश्ता
1: भाई,
2: नहीं निभे सर का, हाल क्या पूछते हो अखर का,
1: बहुत खूब,
2: रोज मंजर
1: वाह
2: है घर में महशर का। आइए एक दूसरी गजल का मतला समाप्त फरमाइए।
1: इरशाद,
2: चैन आराम था शादी की खता से पहले, मैं मुकर जाता तो अच्छा था रजा
1: क्या
2: से
1: बात, क्या
2: पहले,
1: कहने भाई,
2: मैं
1: वाह वाह वाह
2: मुकर
1: वाह,
2: जाता तो अच्छा था
1: रजा से
2: रजा
1: पहले,
2: से पहले। ऐसी ऐसी शेर लीडर देते हैं जनता को।

0: खाते हैं
1: दवा से
0: दवा
1: पहले।
0: से
1: वाह वाह वाह वाह
0: पहले,
1: वाह वाह वाह,
0: यानी वो जहर
1: क्या
0: पिलाते
1: बात, वाह वाह
0: हैं
1: वाह वाह,
0: दवा
1: दवा से
0: से
1: पहले, वाह बहुत खूब।
0: पहले, यानी वो जहर पिलाते हैं दवा से पहले। एक और मतलब है, घुसे लाता ही वो रख देती
1: खता से
0: खता
1: पहले,
0: से पहले, इसलिए जाता नहीं घर में दुआ
1: क्या
0: से
1: बात, क्या बात है,
0: पहले,
1: वाह वाह वाह वाह
0: इसलिए
1: वाह,
0: जाता नहीं घर में दुआ
1: वाह वाह
0: से
1: वाह वाह,
0: पहले, इसलिए जाता नहीं घर में
1: दुआ
0: दुआ
1: से पहले।
0: से पहले। मौज छे से पूछे और अंडे भी वो 10-12,
1: 10-12,
0: मौज छे से पूछे और अंडे भी वो 10-12, लाजमी खाती है हर वक्त गिजा से
1: क्या बात है भाई,
0: पहले,
1: वाह वाह वाह वाह
0: लाजमी
1: वाह वाह,
0: खाती है हर वक्त
1: वाह
0: गिजा
1: वाह वाह वाह
0: से
1: वाह वाह वाह,
0: पहले,
1: बहुत खूब,
0: लाजमी
1: वाह
0: खाती है हर वक्त गिजा से पहले। ये शेर देखिएगा,
1: इशाद
0: फोन स्मार्ट तो अब उनके भी हाथों में है,
1: इशाद,
0: फोन स्मार्ट तो अब उनके भी हाथों में है, जिनके हाथों में हुआ करते थे कासे
1: क्या बात है
0: पहले,
1: भाई,
0: जिनके
1: वाह वाह
0: हाथों में
1: वाह वाह,
0: हुआ
1: बहुत
0: करते थे
1: कासे पहले,
0: कासे
1: बहुत खूब
0: पहले,
1: बहुत खूब,
0: जिनके हाथों में हुआ करते थे कासे पहले। ये शेर पता हो जा चाहूंगा
1: इरशाद
0: कि
1: इरशाद
0: जो
1: इरशाद,
0: ज़ईफ़ हज़रात कम सिन लड़कियों से शादी करते हैं। देखिए ये शेर, तमाद फरमाइए। जिनको लाए हैं नई नानी बनाकर नाना,
1: वाह
0: जिनको
1: वाह,
0: लाए हैं नई
1: नई नानी
0: नानी
1: बना कर
0: बनाकर
1: नाना,
0: नाना, इश्क फरमाते थे उनसे ही
1: क्या
0: नवासे
1: बात है, वाह वाह वाह
0: पहले,
1: वाह वाह,
0: इश्क
1: बहुत अच्छा, अरे
0: फरमाते
1: वाह
0: थे
1: वाह वाह
0: उनसे
1: वाह
0: ही
1: वाह
0: नवासे
1: वाह वाह वाह,
0: पहले,
1: बहुत अच्छा
0: जिनको
1: शेर,
0: लाए हैं नई नानी बना कर नाना,
1: बहुत
0: इश्क
1: अच्छा शेर,
0: फरमाते थे उनसे ही
1: वहां से
0: नवासे
1: पहले,
0: पहले,
1: वाह
0: इश्क फरमाते थे उनसे ही नवासे
1: वाह, बहुत खूब,
0: पहले। ये तंस का शेर, अब तो भाई भी बना भाई के खून का प्यासा,
1: वाह,
0: अब तो भाई भी बना
1: भाई
0: भाई
1: के
0: के
1: खून का
0: खून का
1: प्यासा,
0: प्यासा, मच्छरा खटमला थे खून के प्यासे
1: प्यासे, क्या बात है,
0: पहले,
1: वाह वाह वाह,
0: मच्छरा
1: सच्चा भाई
0: खटमला
1: सच्चा
0: थे
1: तंज है,
0: खून के
1: वाह वाह वाह वाह,
0: प्यासे
1: बहुत खूब,
0: पहले, मच्छरा खटमला थे खून के प्यासे
1: बहुत खूब, बहुत,
0: पहले।
1: वाह
0: ये शेर
1: वाह,
0: देखेगा, इश्क करते हुए बूढ़े ने कहा बूढ़ी
1: वाह,
0: से,
1: इश्क करते
0: इश्क
1: हुए
0: करते
1: बूढ़े ने
0: हुए
1: कहा, बूढ़े
0: बूढ़े
1: ने
0: ने
1: कहा
0: कहा
1: बूढ़ी से,
0: बूढ़ी से, दिल था बेकैफ मोहब्बत की खता
1: खता से,
0: से
1: क्या बात, क्या बात है भाई,
0: पहले,
1: वाह वाह
0: दिल था
1: वाह वाह शेर,
0: बेकैफ खता
1: खता से
0: से
1: पहले,
0: पहले।
1: बहुत
0: आखिरी गजल का
1: इरशाद,
0: आखिरी शेर, सर खुजाने की ना हरगिज भी जरूरत होती, सर खुजाने की ना हरगिज भी जरूरत होती, चिकनी हंडी ही करा लेता वफा से
1: क्या भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह
0: पहले,
1: वाह वाह
0: चिकनी
1: वाह
0: हंडी
1: वाह
0: ही
1: वाह
0: करा
1: वाह
0: लेता
1: वाह वाह वाह,
0: वफा से
1: अच्छा आपने इस्तेमाल किया,
0: पहले,
1: वाह वाह
0: चिकनी
1: वाह,
0: हंडी ही करा लेती वफा से
1: बहुत
0: पहले।
1: खूब
0: मक्ता पेश है, अकदे
1: इरशाद,
0: सानी जो किया मरते ही पहली बेगम, अकदे सानी जो किया मरते ही पहली बेगम, मैं लतीफ हो गया फिर कैद रिहा से
1: वाह क्या बात है भाई,
0: पहले,
1: वाह
0: मैं
1: वाह वाह
0: लतीफ
1: वाह,
0: हो गया फिर कैद
1: रिहा
0: रिहा
1: से
0: से पहले,
1: पहले,
0: चैन आराम था
1: वाह
0: शादी
1: वाह
0: की
1: वाह
0: खता से पहले,
1: वाह, वाह
0: मैं
1: वाह वाह,
0: मुकर जाता तो अच्छा था रजा से पहले।
1: वाह वाह,
0: आइए एक दूसरे
1: बहुत खूब,
0: गजल
1: बहुत
0: का
1: खूब, बहुत
0: मतला
1: खूब,
0: समाप्त फरमाइए।
1: इरशाद
0: इरशाद,
1: इरशाद,
0: बाला पकड़ती

0: तैयार खिचड़ी कर दिया खट्टा बगार
1: क्या
0: के,
1: बात है भाई,
0: तैयार खिचड़ी कर दिया
1: खट्टा
0: खट्टा
1: बंदा बगार
0: बगार
1: के, वाह वाह,
0: के। शेर देखेंगे,
1: इशा
0: चची
1: इशा,
0: की उंगलियों पे चिचा नाचने लगे,
1: क्या बात है।
0: चची की उंगलियों पे चिचा नाचने लगे।

0: बात है,
1: जैसे कि
0: वाह
1: तार हो गए हैं
0: वो
1: वो
0: सितार के,
1: सितार
0: वाह वाह
1: के।
0: वाह,
1: यह सच्चा शेर समाज फरमाइए।
0: शाह
1: हाता
0: शाह,
1: है मेरे खून से दोनों रंगे हुए,
0: वाह
1: हाता है मेरे खून से
0: दोनों
1: दोनों
0: रंगे हुए,
1: रंगे हुए, आया हूं टोली चौकी पे मच्छरों को मार के।
0: वाह।

0: के ये मस्त संजीदा हो गया है। सबके नहीं तो चार के ही काम आ लतीफ, जाना है एक दिन तुझे कांधों पे चार
1: वाह
0: के,
1: वाह वाह वाह वाह
0: जाना है
1: वाह,
0: एक
1: बहुत
0: दिन
1: खूब
0: तुझे
1: बहुत खूब।
0: कांधों पे।

0: है एक दिन तुझे कांधों पे चार के,
1: वाह
0: बाला पकड़ती पहले वो टोपी उतार के।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: कहने
1: वाह
0: दे,
1: वाह, क्या बात है।
0: बहुत बहुत
1: अब तो
0: बहुत
1: भाई
0: सही,
1: बना भाई के खून का प्यासा,
0: खून का प्यासा।
1: अब तो भाई बना भाई के खून का प्यासा, मच्छरां खटमला थे खून के प्यासे। आज के हालात पर इतना अच्छा संजीदा लेकिन मिजाहिया शेर, उन्हीं की ये खूबी है कि वो इस तरह की संजीदा बात को भी मिजाहिया अंदाज में कहते हैं। तो सामाइन, आज हमारे इस महफिल में हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो बहुत संजीदा है, लेकिन कमाल का मिजाज उनके कलाम में मिलता है। बेहतरीन नाज़िम मुशायरा की हैसियत से जाने जाते हैं, उनकी नज़ामत मुशायरों की कामयाबी की जामिन है। जनाब
0: बस
1: सरदार असर साहब जो खूबसूरत शेर कहते हैं, जो सलीस उर्दू के अलावा दखनी जबान में भी सामईन को महजूज करते हैं। एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगी कि आज के हमारे शोरा कमाई पुत बीवी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप ही के एक शेर से मैं आपको दावत सुखन देना चाहूंगी। गुलाम आपको अपना बनाने वाली
0: अरे
1: है,
0: वाह वाह,
1: गुलाम आपको अपना बनाने वाली है, सुना है आपकी बीवी कमाने
0: अरे
1: वाली
0: वाह
1: है।
0: वाह, बहुत
1: जनाब सरदार असर साहब।
2: मुलाहिज़ा फरमाएं
0: इरशाद
2: कि गुलाम आपको अपना बनाने वाली है,
0: जी,
2: गुलाम आपको अपना बनाने वाली है, सुना है आपकी बीवी कमाने
1: कमाने
2: वाली। मुलाहिज़ा फरमाएं कि
0: जी,
2: वो चाहे जूता हो, चप्पल हो, या के बेलन
0: बेलन
2: हो,
0: हो।
2: हमारी अहलिया पक्की निशाने
0: अरे
2: वाली
0: वाह
2: है।
0: वाह
2: अरे
0: वाह,
2: वाह
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
2: वाह यार,
0: वाह वाह, पक्की निशाने
2: सुना
0: वाली,
2: है
0: बहुत
2: आपकी
0: खूब भाई।
2: बीवी कमाने वाली है। जनाब सदर की इजाजत से। कब किसी ने कुछ सफाई में मुझे कहने दिया,
0: जी
2: आंख से बहते थे जो आंसू उन्हें बहने दिया।
0: वाह,
2: कब किसी ने कुछ सफाई में मुझे कहने
0: कहने
2: दिया,
0: दिया,
2: आंख से बहते थे जो आंसू उन्हें बहने
0: बहने
2: दिया।
0: दिया।
2: बाप भाई ने तेरे मिलकर बहुत पीटा मुझे,
0: अरे वाह,
2: राज की बातें लिखी और खत खुला रहने दिया।
1: अरे वाह वाह
2: और
1: वाह,
2: एक तज़मीन मुलाहिज़ा फरमाएं, गालिब के मिसरे से इस्तेफादा किया है कि महफिलें इन गुल रुखों से एक गुलिस्तां हो गईं।
0: अच्छा
2: जनाब सदर की तवज्जो चाहूंगा कि महफिलें इन गुल रुखों से एक गुलिस्तां हो गईं,
0: जी,
2: देखते ही देखते सब दुश्मने जा हो गईं।
0: हाँ
1: शुक्रिया।
2: नाजिमा निखत नसीमा सब यहीं मौजूद
1: मौजूद
2: हैं,
0: हैं,
2: खाक
0: खाक
2: में
0: में
2: क्या
0: क्या
2: सूरतें
0: सूरतें
2: होंगी
0: होंगी
2: जो
0: जो
2: पिनहा
0: पनाह हो
2: होंगी।
0: गए।
2: ये दो तज़मीनें थीं। अब मैं कुछ एकाध खता आपके हालात पर पेश करना चाहूंगा, बल्कि शायर की जिंदगी का एक दूसरा रुख भी होता है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि अच्छे अच्छों को फन में झटकता रहा, झटकता
0: झटकता
2: रहा, शेर अपने सुनाकर मटकता रहा।
1: क्या बात है भाई,
0: क्या
1: वाह
0: अच्छे
1: क्या है,
2: अच्छों को फन में झटकता
1: वाह,
2: रहा, शेर अपने सुनाकर
1: मटकता
2: मटकता रहा, लोग सारे कहां से कहां हो गए,
0: लोग
2: मैं
0: सारे
2: ख्यालों में अपने भटकता
1: मटकता
2: रहा।
1: रहा, क्या बात है
0: वाह
1: भाई,
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
2: लोग सारे कहां से कहां हो गए, मैं ख्यालों में अपने भटकता
1: भटकता
2: रहा।
1: रहा,
2: के बिल्कुल ही जो है एक ताजा गजल है, उसके दूसरे
0: इरशाद
2: शेर
0: इरशाद।
2: मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैं भी अपने दौर का जिल्ले सुभानी हूँ मियाँ।
0: अरे
2: क्या
0: वाह,
2: बात
0: क्या
2: है भाई,
0: कहने
2: वाह
0: भाई,
2: वाह वाह
0: वाह
2: वाह,
0: वाह,
2: ऐसा वैसा मत समझना,
0: हाँ,
2: खानदानी हूँ मियाँ।
1: क्या
0: अरे
1: बात है भाई,
0: वाह,
1: वाह वाह वाह,
2: मैं
0: अरे
2: भी
0: वाह,
2: अपने
0: जिल्ले
2: दौर का जिल्ले सुभानी हूँ
0: सुभानी हूँ
2: मियाँ,
0: मियाँ,
2: ऐसा वैसा मत समझना,
0: खानदान
2: खानदानी
0: वानदानी
2: हूँ
0: हूँ
2: मियाँ।
0: मियाँ,
2: और शेर देखिए कि इसलिए कड़वी लगा करती हूँ मैं सबको यहाँ,
0: जी
2: इसलिए कड़वी लगा करती हूँ मैं सबको
0: को
2: यहाँ,
0: यहाँ,
2: झूठ की दुनिया है ये, मैं सच बयानी हूँ मियाँ।
0: अरे
2: क्या
0: वाह
2: बात
0: वाह
2: है,
0: वाह वाह वाह,
2: झूठ की
0: क्या,
2: दुनिया है ये,
0: मैं
2: मैं
0: सच
2: सच
0: बयानी
2: बयानी
0: हूँ
2: हूँ मियाँ।
0: मियाँ,
2: और ये शेर देखिए कि एक थोड़ा सा हटके है इस कबील से, कि कर लिया करता हूँ मेकअप खुश लिबासी पर कभी,
0: कर
2: कर
0: लिया
2: लिया
0: करता
2: करता हूँ
0: हूँ मेकअप
2: मेकअप
0: खुश लिबासी पर
2: खुश
0: कभी
2: लिबासी पर कभी,
0: कभी।
2: मर्द हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा जनानी हूँ मियाँ।
0: अरे
2: क्या
0: वाह,
2: कहने भाई, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: क्या
2: मर्द हूँ
0: कह,
2: कि मुफ्त में अब जहर भी मिलता नहीं बाजार में।
1: क्या
2: क्या
1: कहने
2: तंज
1: भाई,
2: मुलाहिज़ा
0: बेशक,
2: फरमाए
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कि मुफ्त में
0: अब
2: अब जहर
0: जहर
2: भी
0: भी
2: मिलता
0: मिलता
2: नहीं
0: नहीं
2: बाजार
0: बाजार
2: में,
0: में। हाँ,
2: दिन ब दिन बढ़ती हुई ऐसी गिरानी हूँ मियाँ।
0: क्या
2: क्या
0: कहने,
2: बात है
0: क्या
2: भाई,
0: कहने,
2: वाह
0: क्या
2: वाह।

0: वाह
1: हजरत, इस मौके पर मुझे एक छोटा सा खुद अपना लतीफा याद आया
2: जी,
1: कि मैं जो है अब चूल्हे में अपनी अहलिया की मदद करने के लिए गया और प्याज वगैरह काट रहा था, तो हमारे अहलिया ने कहा कि इतनी सारी प्याज आपने काट दी लेकिन आपकी आंख से एक भी आंसू नहीं बहा।
2: तो
1: मैंने कहा प्याज खरीदते वक्त बह गए।
3: क्या बात
1: है,
2: अशार
1: जो है मुलाजा फरमाए। एक मैंने बचपने में एक पोएम पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर,
2: क्या
1: तो उसका मैंने दूसरा हिस्सा ले लिया, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, दो तीन शेर कहने की कोशिश की। बिल्कुल
2: जी,
1: फरमाए कितने घटिया है किरदार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर,
2: क्या
3: बात है,
1: दोस्त है और पीछे से वार,
3: हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वाह वाह वाह वाह,
2: क्या कहें,
1: दोस्त है और पीछे से वार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर,
2: क्या
1: बात। आप ये शेर देखिए
3: कि
1: एक बीवी एक बीवी के साथ ही अब तक उम्र गुजारी मुश्किल से, एक बीवी के साथ ही अब तक
3: उम्र गुजारी
1: मुश्किल से, आपने रखे पूरे चार।
2: अरे वाह वाह वाह वाह, अरे वाह,
1: कि बीवी के लच्छे में हमको पदक लगाना मुश्किल है,
2: बीवी के लच्छे में हम
1: बीवी के लच्छे में हमको पदक लगाना मुश्किल है, महबूबा को चंदन हार।
3: वाह वाह वाह वाह वाह,
2: क्या कहने, अरे वाह वाह वाह,
3: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह,
1: बीवी के लच्छे में हमको पदक लगाना मुश्किल है, महबूबा को चंदन हार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कितने घटिया हैं किरदार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, दोस्त हैं और पीछे से वार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। और एक गजल के एक दो चार शेर मुलाहजा फरमाएं, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर के बाद मैंने कुछ हटकर कहने की कोशिश की है कि मिल गई हमको सजा तुझसे शनासाई की, तेरे घर वालों ने जूतों से पजीराई की,
3: क्या बात है,
1: मिल गई हमको सजा तुझसे शनासाई की, तेरे घर वालों ने जूतों से पजीराई की, और एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना, एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की, एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की, वो पड़ोसन पर भी हक अपना समझ लेते हैं, वो पड़ोसन पर भी हक अपना समझ लेते हैं, है यही बात बुरी मेरे बड़े भाई की,
3: अरे वाँ वाँ वाँ।
1: मिल गई हमको सजा तुझसे शनासाई की,
3: शहनाई वाला
1: तेरे एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना,
3: क्या बात,
1: एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की,
3: क्या बात है भाई,
1: कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की। और एक गजल के चंद शेर मुलाहजा फरमाए, मैं चुनिंदा चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाए, लीडर थोड़ा सा सियासी तंज है, तंज गालिब है, मिजाज कम है, मुलाहजा फरमाए कि लीडर के पास फन ये निराला है, रदीफ देखिए, ये लीडर के पास
3: फन ये निराला है,
1: फन ये निराला है हाथ में, हुब्बे वतन है लब पे, घोटाला है हाथ में,
2: अरे क्या कहने भाई, अरे वाह वाह वाह,
1: लीडर के पास फन ये निराला है हाथ में, हुब्बे वतन है लब पे, घोटाला है हाथ में, अब दोस्ती का हाथ मैं कैसे मिलाऊंगा, अपनी अनानियत का जो छाला है हाथ में,
2: क्या क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने,
1: अब दोस्ती का हाथ
3: लाजवाब
1: से मिलाऊंगा, अपनी अनानियत का जो छाला है हाथ में, और कर दो किसी का खत्ल, चालेंगे हम तुम्हें,
2: कर दो किसी का खत्ल,
1: कि कर दो किसी का खत्ल,
3: बचालेंगे
1: हम तुम्हें, मरकज के एक वजीर का साला,
3: मरकज के एक वजीर का साला है हाथ में,
1: वाह वाह, किसी का खत्ल, यूं तो कमाई झूठ की खाता रहा सदा, कैसे कहूं मैं सच के निवाला है हाथ में,
2: वाह वाह, अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह,
1: झूठ की खाता रहा सदा, कैसे कहूं मैं सच के निवाला है, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत,
2: बहुत बहुत अच्छा असर आपने छोड़ा है,
4: एक शादी का असर मुझ पर हुआ इतना, एक शादी का असर मुझ पर हुआ इतना, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की,
2: क्या
4: बेचारे वाकई बहुत डरे सब में। सामईने कराम, अब मैं हैदराबाद के एक नामवर मोहतरम शायर को दावत कलाम देती हूँ, जिन्होंने एक बड़ा अरसा अदब की खिदमत में गुजारा है, तंजो मिजाह के साथ साथ ड्रामे भी तश्कील देते रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मोइन अमर बम्बू से है, उन्हीं का एक शेर उनकी शख्सियत की पहचान है। दिल पहले तो लगाई तेरी ऐसी की तैसी, दिल पहले तो लगाई तेरी ऐसी की तैसी, अब हो गई पराई तेरी ऐसी की तैसी,
3: क्या बात है
4: जनाब, डॉक्टर मोइन अमर बंबू
0: लीजिए। सबसे पहले

0: आदमी रिटायरमेंट होने के बाद उसकी क्या हालत हो जा जरा सुनिए। हालत है अपनी गिरती दीवार की तरह।
1: क्या कहने साहब, वाह वाह वाह।
0: हालत है अपनी गिरती दीवार की तरह, म्यूजियम की जंखाई तलवार की तरह।
1: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह वाह।
0: म्यूजियम की जंखाई।

0: बात है, क्या बात है,
1: रिटायरमेंट का एक फायदा तो हुआ मुझे
0: जी,
1: वो सुनिए क्या फायदा हुआ।
2: मैं रिटायर्ड होकर भी हूँ काम का कुछ,
1: मैं रिटायर्ड होकर भी हूँ काम का कुछ, बुढ़ापे में सब मेरे काम आ रही हैं। बुढ़ापे में
3: सब मेरे काम आ रही हैं।
1: जो बेवाएं कल तक नहीं पूछती थी, वजीफे में लिखवाने
3: नाम आ रही है। क्या बात है, क्या बात है।
1: परसों मुझे एक लड़की मिली थी, बोली आबिश तक छोड़ दियो, लेको जा रहा था, साला देखा लेकिन साला शक नहीं करता। मुझसे ही तुम काई को मंगे लिए पूछा, तो लड़की बोली बुड्ढों के हम साथ रहे तो देखने वाला शक नहीं करता।
3: अरे वाह वाह वाह, क्या
0: बात है, वाह वाह वाह
3: वाह वाह,
2: अच्छा फार्मूला दिया है आजकल की नस्ल को,
0: वाह वाह।
1: लीजिए अकदेशानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है। अकदेशानी बोले तो दूसरी शादी को अकदेशानी बोलते हैं। अकदेशानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है, था लिफाफा नया मजबून
3: पुराना लग रहा है।
0: क्या बात,
1: था लिफाफा नया मजबून पुराना लग रहा है, घूंघट उठते मेरे दीदे निकल गए बम्बू, टॉप 90 था मगर रिक्शा पुराना लग रहा है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए, लाही जहेज खूब तो दिल से दुआ दिए। मैं जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाऊं अब, विस्पा में मेरी लारी का पहिया लगा दिया।
3: विस्पा
1: जरा संजीदा दौर में आ जाएंगे, कौमी एकजहती पे एक नज्म है साहब, जरा मुलाहजा फरमाइए
3: जी इरशाद,
1: जरा गौर से सुनिए। दिल में जो छुपी बात है वो आज कहेंगे, दिल में जो छुपी बात है वो आज कहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे।
3: अरे वाह वाह वाह वाह,
1: दिल में जो छुपी बात है वो आज कहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। वो लुत्फ इस जहां की दौलत में नहीं है, वो लुत्फ इस जहां की दौलत में नहीं है, जो इत्तेहाद में है वो नफरत में नहीं है, जो इत्तेहाद में है वो नफरत में नहीं है। नफरत की हवाओं का रुख आज मोड़ दो, दुनिया में भेदभाव की हर रस्म तोड़ दो, ये सारे गम जमाने के हम मिलके सहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। ऐसे रहो जहां में तुम हो के बेमिसाल, ऐसे रहो जहां में तुम हो के बेमिसाल, हरगिज़ कभी जुदाई का आए नहीं ख्याल, हरगिज़ कभी जुदाई का आए नहीं ख्याल, त्योहार हो या ईद हो सब मिल के मनाएं, नगमे वफा के प्यार और मोहब्बत से सुनाएं, एक दूसरे के गम और खुशी मिल के सहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। चाहत से दुश्मन को देखोगे प्यार से, चाहत से जो दुश्मन को देखोगे प्यार से, वो दोस्त नजर आएगा हर एतबार से। तुम एक हो तो कोई बुरा कर नहीं सकता, फितना कोई भी तुमको जुदा कर नहीं सकता, दरियाए मोहब्बत में सदा मिल के बहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। खुशबूए गुल जुदा है तो लेकिन चमन है एक, खुशबूए गुल जुदा है तो लेकिन चमन है एक, रंगे लहू है एक तो अपना वतन है एक, मिलके रहोगे बम्बू तो दिल शाद करेगी, हर आने वाली नस्ल तुम्हें याद करेगी। एक साथ हम जो रोए, एक साथ हम जो रोए तो एक साथ हंसेंगे, साथ हम जो रोए तो एक साथ हंसेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। ये आजकल शादियों

0: की तकरीब में वीडियोग्राफर को जो बुलाया जाता है
1: जी
0: उसका हाल सुनिए साहब।
1: चल
0: कोई तकरीब हो फूलों का चमन देखता है, कोई तकरीब हो फूलों का चमन देखता है, कितने खुश रंग लिबासों में बदन देखता है।
2: ना, क्या बात,
1: वाह वाह,
0: बंबू क्या वीडियो वाला भी है किस्मत का धनी, दुल्हे से पहले ये कम्बख्त दुल्हन देखता
2: अरे
0: है।
2: अरे वाह वाह वाह, क्या बात,
1: अरे अच्छा
3: तंज,
1: बहुत अच्छा तंज किया आपने,
3: सही कहा।
1: वाह वाह।
0: और एक हुआ अफसोस क्या किया बीवी के धोखे में, हुआ अफसोस क्या किया बीवी के धोखे में, जहर का जाम मैंने पी लिया बीवी के धोखे में। मेरी सास ब्यूटी पार्लर से सच कर घर में जब आई, हेलो डार्लिंग उसको कह दिया बीवी के धोखे में। एक तंजिया चव्वा है साहब, शोकेश में है जूते, फुटपाथ पर किताबें। शोकेश में है जूते, फुटपाथ पर किताबें, सदियों के बाद अब भी दौरे जहालत है। सदियों के बाद अब भी दौरे जहालत है, देखा जो मैंने बंबू, अंदाजा हुआ मुझको, इंसान को इल्म की नहीं जूतों की जरूरत है। इंसान को इल्म की नहीं जूतों की जरूरत है। ये एक और संजीदा चव्वा मुलाहजा फरमाइए। वक्त खजा महज है जान का लहू, वक्त खजा महाफिज है जान का लहू, इंसान के काम आता है इंसान का लहू। उस वक्त पूछता नहीं ये कोई डॉक्टर, हिंदू का लहू है या मुसलमान का लहू। ये नौजवान नस्ल के ताल्लुक से, मुश्किल मेरी आसान क्या मौला नहीं करता, मुश्किल मेरी आसान क्या मौला नहीं करता, इस वास्ते बंदों पे मैं तकिया नहीं करता। जिस दिन से बहू आई है घर में मेरे अपने, बेटे की कमाई पे भरोसा नहीं करता, बेटे की कमाई पे भरोसा नहीं करता।
2: बहुत
0: बड़ी मनहूस है ताबीर मेरे ख्वाब के साथ,

0: औलाद के ताल्लुक से माँ क्या कह रही है,
1: जी
0: बस ये
1: इरशाद
0: एक आखिरी जवाब सुन
1: इरशाद
0: लीजिए।
1: इरशाद।
0: छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी,
1: ठीक भी आए तुझे
0: छींक
1: तो
0: भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद,
1: क्या कहते हैं आप।
0: जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद। बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब, बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब। बददुआ किस मुंह से दूं तुझको दुआ देने
1: वाह
0: के
1: क्या बात
0: बाद,
1: कह रहे हैं
0: बददुआ
1: वाह
0: किस मुंह से
1: वाह
0: दूं
1: वाह
0: तुझको दुआ
1: वाह
0: देने के
1: बहुत
0: बाद।
1: बहुत खूब
0: लाजवाब।
1: लाजवाब।
0: जनाब मोइन अमर बंबू के बाद अब मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ सदर मुशायरा चिचा पालमुरी को दावत सुखन देती हूँ कि वो अपना कलाम सुनाए। चिचा पालमुरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका नाम बैनुल अक्वामी सतह पर जाना जाता है। संजीदा व मिजाहिया दोनों तरह की शायरी करते हैं, बेहतरीन नातगो शायर की भी हैसियत से जाने जाते हैं। चिचा पालमुरी की शख्सियत पर सरदार सलीम का ये शेर पेश है। दिल में रखा लब पे वावेला नहीं होने दिया, दिल में रखा लब पे वावेला नहीं होने दिया, मैंने तेरे दर्द को मैला नहीं होने दिया।
1: वाह
0: जनाब
1: वाह
0: चिचा
1: वाह।
0: पालमुरी।
2: मोहतरम सामईन, ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से जो मिजाहिया मुशायरा अब तक जो आपने सुना है, ये चार भतीजों की बारी थी, अब आखिर में चिचा
1: चिचा
2: की
1: की
2: बारी
1: बारी
2: है।
1: क्या बात है
2: मैं चाहता
1: वाह वाह
2: हूँ
1: वाह वाह वाह।
2: जो चेहरा झुर्रियों से याद से मामूर होता है, जो चेहरा झुर्रियों से याद से मामूर होता है, वजीफा तब कहीं सरकार से मंजूर होता है। अजब क्या है चिचा जब बज्म में आए तो हलचल हो, अजब क्या है चिचा जब बज्म में आए तो हलचल हो, जहां हो चार बंदर एक वहां लंगूर होता है।
1: अरे
0: एक
1: वाह क्या बात है
2: हजल के कुछ शेर पेशे खिदमत हैं
1: चिचा जी।
2: उनकी।

0: मैं क्या करूं, शेर सुने सब। उनके हाथों में लट्टू है जाली नहीं,
1: अरे वाह,
0: उनके हाथों में
1: लट्टू है
0: लट्टू
1: जाली।
0: है जाली नहीं, अब तो हालात खतरे से
1: खाली
0: खाली
1: नहीं। अरे
0: नहीं,
1: वाह वाह वाह
0: औरतां मर्दां सब घर के जादूगरां, कोई चक्कर चलाए तो मैं क्या
1: जादूगर। अरे वाह
0: करूं,
1: भाई वाह वाह।
0: औरतां मर्दां सब घर के जादूगरां, कोई चक्कर चलाए तो मैं क्या करूं। शे सुनिए, मैं

पग उठते ही झाड़ू लगाना तो है, बर्तना धो को तालू खुजाना तो है, जबके सर भर को उनके जुआ है, मगर मेरी तालू खुजाए तो मैं क्या करूं। ये जो समाखराची का जो मैंने आपका वक्त ख़राब किया है, असल में मुझे सुनाने हैं दो बंद इस नज़म के, मुझे सिर्फ दो बंद सुनाना है। एक बंद है जो आजकल जिस तरह की शादियां हो रही हैं, लेकिन इसमें दो अहादीस का इसमें मैंने जिक्र करने की कोशिश की है, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। बैंड बाजे पटाखों की है गड़बड़ी, और दावत में नल्ले तलक दे तड़ी।

एक और बन सुनिए, चांद के सात तारों के दसमा डला, 14 सदियों से हासिल हैं दो आफरा। चांद के सात तारों के दसमा डला, 14 सदियों से हासिल हैं दो आफरा, रूबरू आज भी है।

0: मैं क्या करूं, मखते का मुलाजा।
1: अच्छा
0: मेरी किस्मत में लिखो है दो एटमा,
1: वाह
0: बावजूद इसके आते हैं फोटुआ। मेरा फिगर ही ऐसा है चिच्चा हजरत, रिश्ते घर बैठे आए तो मैं क्या करूं। एक और नज़्म है साहब, दक्कनी में एक मुहावरा बहुत मशहूर है, पानी छिड़कना है। पहले होता यूं था, अब हो नहीं रहा है। जब किसी घर बच्चा होता तो घर की बड़ी बूढ़ियाँ बच्चे को नहलाने से पहले थोड़ा सा पानी पहले उसकी पीठ पर छिड़कती थी। तो उससे मुराद ये था, उस
1: जी
0: बड़ी बी के जो
1: जी
0: किरदार हैं उसमें आ जाते हैं।
1: जी
0: मैंने
1: अच्छा
0: उस किरदार में, यानी कई एक किरदार को अलग अलग मैंने करते हुए कुछ किरदारों की मैंने पेश करने की कोशिश की है।
1: अच्छा
0: अब मुलाहिज़ा हो, बोल रे राजा हिंदुस्तानी, बोल रे राजा हिंदुस्तानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी, तुझे कौन
1: क्या बात
0: छिनकी
1: है, क्या
0: रे
1: बात है,
0: पानी,
1: क्या बात है,
0: दाया आया।

0: रे पानी बन ला जाओ। जामू खोलना है नहीं खोलता, झूठ को सच से ज्यादा तोलता, मिश्री मिला को एलवा घोलता।
1: वाह वाह,
0: जामू खोलना है नहीं खोलता, झूठ को सच से ज्यादा तोलता, मिश्री घुला को एलवा घोलता। हीरो या ड्राकुला सानी, तुझे कौन जिंदगी रे पानी, तुझे कौन
1: क्या बात है,
0: जिंदगी रे
1: ये तो आप हरदम का कोई
0: पानी।
1: जवाब नहीं है आपके। वाह वाह
0: सोच
1: वाह
0: है तेरी
1: वाह वाह,
0: हिटलर जैसी।

0: मेरे पानी
1: उजला है पैराहन तेरा, लेकिन काला है मन तेरा, साजिश तेरी साधन तेरा। उजला है पैराहन तेरा, लेकिन काला है मन तेरा, साजिश तेरी साधन तेरा। लूट मार है या सुल्तानी, तुझे कौन जिनकी रे पानी, तुझे कौन जिनकी रे पानी। एक खास बंगला साहब, शैतान की संगत में पड़को मुल्का।

0: मुझे कौन जिनकी
1: वाह
0: रे।
1: वाह,
0: एक
1: क्या बात,
0: वजाहती है, बंद मुलाजा हो।
1: इरशाद।
0: घर में जजगी हो तो खुशियाँ, तब पानी छिनकेंगी बुढ़िया। कहाँ कहाँ खिंच अब हो रही जजगियाँ। घर में जजगी हो तो खुशियाँ, तब पानी छिनकेगी बुढ़िया। कहाँ

इसके जो है सब इसके जो कामा, इसके जो है सब इसके जो कामा, आम के झाड़ को लग रही जामा, नाच रही गा रहे नकली हूरा, पादा नीसा सारे गामा, दोजख में जन्नत के खाबा, इसके जो है सब इसके जो कामा, इसके जो है सब इसके जो कामा।

0: प्रभु के टांगा
1: वाह
0: इसके जो है सब इसके जो काम आ इसके जो है सब इसके जो काम
1: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब क्या क्या हकीकतें जो है आपने अपने अशार में पेश की हैं। हालात हाजरा पर सियासत पर तंज किया आपने बहुत खूब बहुत खूब बहुत
2: जनाब साजिद संजीदा साहब लतीफुद्दीन लतीफ साहब जनाब सरदार असर डॉक्टर मोइन अमर बम्बू और चिचा पालमुरी ने हिस्सा लिया था और बेहतरीन मिजाहिया कलाम पेश किया है। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आप तमाम ने इस मुशायरे से जरूर लुत्फ उठाया होगा।
3: ये आकाशवाणी हैदराबाद है दोस्तों 101.9 एफएम पर अभी आपने सुना मजाहिया मुशायरा। एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की।

दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप गीत सुरेले गाते जा प्रोग्राम में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, इंसान के लिए पहला प्यार एक नशे की तरह ही होता है, एक ऐसा नशा जो हमेशा किसी न किसी तरह आशिक का पीछा करता रहता है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, याद माजी गमे इमरोज़ उम्मीद फरदा, याद माजी गमे इमरोज़ उम्मीद फरदा, कितने साए मेरे हमराह चला करते हैं।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और 101.9 FM पर आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी गीत। अभी आपने DDLG फिल्म से लता मंगेशकर की जुबान आवाज़ में ये गीत सुना और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और हुब्बुल वतनी को पेश करता हुआ एक गीत आपके लिए हाजिर है।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप 101.9 एफएम पर सुन रहे हैं गीत सुरीले गाते जा में, खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी आपने हुबुल वतनी से सरशार ये खूबसूरत नगमा सुना फिल्म बॉर्डर से। अब आपके लिए पेश है एक ऐसा नगमा जो ज़रूर आपको याद होगा। 90s की मशहूर फिल्म का ये नगमा आपको याद माजी की तरफ ले जाएगा। तो पेश है ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अब पेश है पयाम शब, तहरीर व पेशकश है ज़ैदी साहब की।

0: दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। मोहब्बत में तवाजुन जरूरी है, सिर्फ खौफ या सिर्फ यकीन, दोनों इंतहाएं नुकसानदा हैं। एतदाल ही सुकून देता है। भरोसे को मजबूत बनाए, अगर एतमाद है तो इसे शक और कदशात से कमजोर ना करें। हर वक्त बिछड़ने का डर रिश्ते की खूबसूरती को मुतासिर करता है। मुस्तकबिल के अंदेशों से ज्यादा मौजूदा लम्हों की कदर करें। सच्ची मोहब्बत वो है जहां एतमाद खौफ पर गालिब आ जाए। अगर दिल में यकीन मजबूत हो तो जुदाई का डर खुद ब खुद कम होने लगता है।
1: इसी खूबसूरत पैगाम के साथ नए रंग इख्तिताम पज़ीर होता है। अगली बज़्म में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगी। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप

से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत का। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्यार जीवन की वो सुंदर भावना है जो हमें संवेदनशील बनाती है, जिम्मेदार बनाती है और दूसरों को खुशी में अपनी खुशी ढूंढना भी सिखाती है। जब दिल में सम्मान और विश्वास हो तो हर रिश्ता जिंदगी को रोशन कर देता है, लेकिन कोई रिश्ता कब प्यार में बदल जाता पता ही नहीं चलता।

फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, संगीत जतिन ललित का और बोल आनंद बख्शी के। दोस्तों अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजार से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत खयाम का और बोल मीर तकी मीर के।

दोस्तों, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें कितना भी सुन लो लेकिन दिल नहीं भरता। हमारे भारतीय संगीत में न जाने कितनी ही ऐसी सुरीली आवाजें हुई हैं जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है।

फिल्म किनारा से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाज में, संगीत आर डी बर्मन का और बोल गुलजार के। आइए दोस्तों, अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जहरीला इंसान से, आवाज किशोर कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का और बोल मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों, जब हमें किसी का वर्षों से इंतजार हो, ऐसे में वो हमराही, वो हमसफर जब हमारे सामने आ जाए, तो हमारे पांव अक्सर जमीन पर नहीं पड़ते। हमारा मन झूम उठता है और मन के साथ साथ हमारे पांव भी थिरकने लगते हैं। अगला गाना भी कुछ ऐसा ही अनुभव कराने वाला है।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ।

फिल्म घर से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, संगीत आर डी बर्मन का और बोल गुलजार के। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से, आवाज किशोर कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का और बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

दोस्तों, मोहब्बत भरी मुलाकात हमेशा खास होती है, क्योंकि उसमें बनावट नहीं होती, बस मासूमियत होती है। जब आप किसी को पहली बार प्यार भरी नजरों से देखते हैं और बिना किसी वजह के मुस्कुरा देते हैं, तो समझ लीजिए दिल ने अपनी कहानी शुरू कर दी। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो धीरे धीरे नहीं, बल्कि कभी कभी तो एक ही नजर में हो जाता है। तो अगर आपको भी याद है वो पहली मोहब्बत भरी मुलाकात, वो पहली मोहब्बत भरी मुस्कान, तो ये गीत आज आपके लिए।

0: फिल्म साजन से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, संगीत नदीम श्रवण का और बोल समीर के। श्रोताओं, अगला खूबसूरत गीत बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म हस्ते जख्म से, आवाज मोहम्मद रफी और बलबीर की, संगीत मदन मोहन का और बोल कैफी आजमी के।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है ज्वेल थिफ, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। पूरे खाली घर में नितांत बैठी मैं और बाहर से आती ये बारिश की बूंदों की टिप टिप की ध्वनि मुझे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है, जैसे किसी ने कोई मधुर संगीत छेड़ दिया हो और मैं मंत्रमुग्ध होकर इसकी ओर खींची चली जा रही हूं। घर में जब पेड़ पौधों को देखती हूं सभी खुशी से झूम उठते हैं और वर्षा के स्पर्श मात्र से

मुझे भी ये बारिश उतना ही सुकून देती है, मेरे तपते मन को थोड़ी सी शीतलता, और आंखों से बहते आंसुओं को छुपाना सहज हो जाता है। और मैं घंटों बिता देती हूँ बारिश में भीगते हुए। ये मेरा सबसे पसंदीदा मौसम जो ठहरा। अगला गीत, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में, आवाज मुकेश की। आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत, आवाज है लता मंगेशकर की।

कितनी खूबसूरत बात है कि पुराने पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हवाएं तेज हैं, बल्कि इसलिए कि पुराने के जाने का समय आ गया है। अब नई कोपलों का आगमन हो चुका है, छोटे पत्ते धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और इस तरह वीरान हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है, ठीक हमारी जिंदगी की तरह। यहां भी पतझड़ आता है,

जो खाली कर जाता है किसी अपने की जगह। लेकिन वो छोटी कोपलें जल्दी ही भर देती हैं उस जगह को अपने रंग बिरंगी छटा से। वीरान कुछ नहीं रहता, बस दुनिया में आना जाना जारी रहता है। और यही नियम प्रकृति का सबसे खूबसूरत नियम है। अगला गीत फिल्म का नाम है राजपूत, आवाज किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत, फिल्म का नाम है बावर्ची और आवाज है मन्ना डे की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगी। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में पहला गीत, फिल्म का नाम है गीत और आवाज है मोहम्मद रफी की।

अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से, अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया। मन की खिड़की थी आंखें, जो कुछ भी छुपा था मन में वो सब आंखों में दिखा। जो कुछ भी छुपा था मन में वो सब आंखों में दिखा। अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया, और मन खाली हो गया। अगला गीत, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी, आवाज है कुमार शानू की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के

प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और गीत सुहाने में आज आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शागिर्द, आवाज है लता मंगेशकर की।

यही सोचकर चुरा लिया था, यही सोचकर चुरा लिया था एक रुमाल उसका मैंने, यही सोचकर चुरा लिया था एक रुमाल उसका मैंने। मोहब्बतें कहाँ मुकम्मल होती हैं, मोहब्बतें कहाँ मुकम्मल होती हैं, उसको तो बिछड़ ही जाना था। रखती हूँ कैद में छुपा हवाओं से उसकी खुशबू को, इसी के सहारे बाकी उम्र जो बिताना था, इसी के सहारे बाकी उम्र जो बिताना था। अगला गीत, फिल्म का नाम है मेरे सनम और आवाज है मोहम्मद रफी की।

यूं कस के हाथ थामे रहना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं। यूं कस के हाथ थामे रहना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं। खुद ही पूछ लेना हाल मेरा कि तुमसे छुपाती बहुत हूं। जानते हो ना, भीतर बहुत से समुद्र छुपाए, मैं मुस्कुराती बहुत हूं। मैं मुस्कुराती बहुत हूं। यूं कस के हाथ थामे रखना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं। अगला गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

अरे वक्त आ चला है कि एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। वहीं IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200

वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, दिल के भीतर ही मगर एक राजदार रह गया। वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, दिल के भीतर ही मगर एक राजदार रह गया। हमने चाहा था कहें सब कुछ सलीके से मगर, हमने चाहा था कहें सब कुछ सलीके से मगर, होठ चुप थे आंख में बस एक संसार रह गया, आंख में बस एक संसार रह गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती।

की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गीत, आवाज है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया। रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया। चांद ढलता ही रहा, सूना सा आंगनदार रह गया। तुम गए तो यूं लगा जैसे समय थमसा गया। तुम गए तो यूं लगा जैसे समय थमसा गया। घड़ी चलती ही रही पर दिल हिलाचार रह गया। घड़ी चलती रही पर दिल हिलाचार रह गया। रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बाबू, आवाज है लता मंगेशकर की।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते फिर मिलने के वादे के साथ और एक खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिल्म का नाम है हम जोली, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद सुरभि होंगी आपके साथ। मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है।

0: कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरो स्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिक विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं खेलों में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegations of

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस जिंदगी में कुछ रिश्ते शोर से नहीं, आवाजों से नहीं, बल्कि एहसास की एक प्यारी डोर से बंध जाते हैं। और जब ये दिल जुड़ जाते हैं तो हर धड़कन एक कहानी कहने लगती है। तो चलिए, इसी बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ हम और आप सुनते हैं ये सदाबहार नगमा। फिल्म है धरती कहे पुकार के, लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज में सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम है हमराही और सुरभि है आपके साथ। दोस्तों, ठंडी हवाओं का अपना एक अलग ही जादू होता है, एक अलग ही मिठास होती है। लेकिन कई बार जब करीबी व्यक्ति, वो इंसान जिससे दिल लग गया हो, वो दूर रहे और कुछ पुरानी यादें दिल में कसक बनकर उभर आए, तब कुछ मीठे एहसास या ये कहा जाए कि दिल का दर्द उभर कर दिल के करीब आ जाता है। तो चलिए सुहाने से मौसम में सुनते हैं हम और आप मिलकर ये गीत।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग, यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.5।

0: हम लोग एक पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
0: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

हमरा ही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूँ सुरभि आपके साथ. बहुत खूब कहा है किसी ने कि अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको. मैं दुश्मनों के बहुत ही करीब रहता हूँ, समझ के सोच के यारों में ढूंढना मुझको. खुदा कसम ये तुम्हारी ही भूल है यारो, खुदा कसम ये तुम्हारी ही भूल है यारो, नजर नवाज नजारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको. और दोस्तों, रात की महफिल में कभी कभी जहां मोहब्बत की, इश्क की, दर्द की बात हो रही होती है, ऐसे में लोक रंग और शरारत का तड़का लगना भी ज़रूरी होता है. तो चलिए सुनते हैं मधुमति फिल्म का ये गीत. लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब और साथियों की आवाज़ से सजा चुलबुला गीत आपके लिए.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरभि के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं हमराही और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जी हाँ, कुछ गीत सिर्फ धुन नहीं होते बल्कि वो किसी अधूरी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। कभी किसी अपने की याद जब उठती है या फिर कभी किसी बिछड़ते रिश्तों में कसक हो आती है और कभी दिल की वो खामोशी जिसे हम शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते। तो आज की इस रात एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जिसकी मिठास और दर्द सीधे दिल को छू जाते हैं, रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में। चलिए सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

प्यार में कभी रूठना होता है तो कभी मनाना होता है, और बस किसी अपने का साथ इस सफर को बहुत खूबसूरत बना देता है। पुराने दौर के गीतों में यही सादगी और अपनापन तो दिल को छू जाता है। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है चोरी चोरी, फिल्म का सदाबहार दिल को सुकून देने वाला गीत लता जी और मन्ना डे साहब की आवाज़ में।

कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि रात की खामोशी में दिल के और करीब आ जाती हैं। किसी की आवाज़, किसी की मुस्कुराहट और कुछ अधूरे पल दिल को चुपचाप छू जाते हैं। इसी मीठी कसक और यादों के एहसास के साथ चलिए चलते चलते सुनते हैं पारस मणि फिल्म का ये गीत।

और इसी गीत के साथ हमराही का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां

0: वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स

0: उपयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5,00,000 घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 लोगों से अधिक की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। और खेलों में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। वहीं गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। आजाद फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अपलम चपलम। दोस्तों कभी कभी किसी की मुस्कुराहट दिल की सारी उदासी दूर कर देती है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो याद आते हैं तो माहौल में एक अजीब सी एक खूबसूरत सी मीठी सी रोशनी घुल जाती है। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है पारसमणि, लता मंगेशकर और कमलेश की आवाज़।

पुराने गीतों की बात ही कुछ अलग है, थोड़ी शरारत, थोड़ी मासूमियत और ढेर सारे खूबसूरत एहसास साथ में। दोस्तों, जब मुस्कुराने और ज़िंदगी जीने को लेकर एक अंदाज की बात की जाए तो ये गीत मस्ती भर देते हैं, आत्मविश्वास और दिलकश अदाओं से सीधे दिल में उतर जाते हैं। और ऐसे में जब बात हो एक ऐसे गीत की जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ हो और साथ में महमूद साहब की मस्ती जुड़ जाए तो ये महफिल अपने आप रंगीन हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं गुमनाम फिल्म का ये बहुत ही शानदार गीत रफ़ी साहब और महमूद की आवाज़ में।

0: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा कहां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या
1: हमें काले हैं

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। कभी कभी चोट दुश्मनों से नहीं बल्कि उन अपनों से मिलती है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और जब दर्द दिल से निकलकर लफ्जों में बयां होता है तो वो सीधे एहसास तक पहुंच जाता है, और इसी दर्द को, इसी सच्चाई को बयां करता है आखिर क्यों फिल्म का ये बेहद भावुक गीत। जी हाँ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। चलिए सुनते हैं आखिर क्यों फिल्म का ये गीत।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। भाई, पुराने गीतों की मिठास सुरों में नहीं बल्कि लफ्जों में।

0: गीत में और दिल छू लेने वाले अंदाज में बसती है। साथ ही जब रफ़ी साहब की आवाज़ हो तो कोई भी गीत हो वो एक रंग में ढल कर अपने दिल तक पहुंच ही जाता है। तो चलिए गंगा जमुना फिल्म से सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में ये चुलबुला गीत।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक, हमारी आपकी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह यात्रा दोनों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हो रही है।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी।

0: टेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था

0: विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई थी। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की समय सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में कल रात पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वर यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of engagement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegations of BRIC countries who called on Mr. Modi in New Delhi yesterday, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं सुरभि और प्रोग्राम है भोर सुहानी। दोस्तों, नई सुबह सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं लाती बल्कि एक नया भरोसा, नई उम्मीद और फिर से शुरुआत करने का मौका भी लेकर आती है। कल क्या हुआ ये सोचकर आज का दिन मत खोइए, क्योंकि जिंदगी हमें हर सुबह यही कहती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मुस्कुराइए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाइए।

आइए, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी कामयाबी बनती हैं। जी आप सुन रहे हैं भोर सुहानी सुरभि के साथ, जहां हम हर सुबह करते हैं एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद की बात। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

सुबह की ताजी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, उगते सूरज की पहली किरण, और जब ऐसे खूबसूरत पल साथ हों तो ये दिन अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, यशुदास की आवाज में, अयास फिल्म से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

भोर सुहानी सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, जिंदगी एक सफर की तरह है,